0: मोह दर्शन दीक्षा दे दो आगे दो
1: बड़ी मनोहर मोहन के दर हरियो बड़ी मनोहर मोहन के दर हरियो बड़ी मनोहर मोहन के दर हरियो बड़ी मनोहर मोहन के दर हरियो बड़ी मनोहर

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।